0: our beloved Ranveer Kapoor.
1: Oh my god.
0: उनकी एक पिक्चर आई थी, एकदम बल्ती पिक्चर आई थी.
1: बल्ती?
0: हाँ.
1: कौन सी?
0: एनिमल.
1: Oh yeah yeah, that was Balti. Whatever Balti is.
0: Yeah. So animal is Balti.
1: So that's what I'm saying.
0: Yeah.
1: Ki whatever Balti is, it actually sounds ki it yeah. is apt for that movie.
0: Yeah. उस पिक्चर में एक गाना ठीक है, गाने का नाम है पहले भी मैं, रोमांटिक गाना
1: है. हाँ, पहले भी मैं. हाँ याद है मुझे.
0: नाइस सॉन्ग.
1: अच्छा सॉन्ग है वो.
0: अच्छा गाना.
1: वो इन्होंने गाया?
0: Yeah, वो इन्होंने गाया.
1: अच्छा, विशाल
0: मिश्रा.
1: मिश्रा.
0: ओके. एंड देयर इज दिस वन सॉन्ग, मतलब नया गाना नहीं है, बहुत पुराना भी नहीं है, बट समझ ले 3 या 4 साल पुराना रहेगा. एंड आई केप्ट फीलिंग दैट ये गाना अर्जुन कनुंगो, देयर इज दिस आर्टिस्ट, सिंगर है, पॉप आर्टिस्ट है, उसने गाया है.
1: अच्छा.
0: एंड आई केप्ट फीलिंग कि यार सही है, अगर अर्जुन ने गाना गाया तो अच्छी बात है, गुड. मतलब मेरे को पता नहीं था वो बॉलीवुड में भी गाना गाता है. ही इज एक्चुअली वो अंग्रेजी गाने बनाता है, हिंदी भी गाता है, बट वेस्टर्न
1: ज्यादा है.
0: तो मेरे को लगा था सही है, ठीक है. बट नहीं, दैट सॉन्ग वॉज ऑल्सो और इज ऑल्सो संग बाय विशाल मिश्रा. So Vishal Mishra reminds me of Arjun, and Vishal Mishra also reminds me of Ash King. But jab hi I listen to Vishal Mishra, I like listening to Vishal Mishra.
1: Okay, matlab usi ke song sunne ka bar bar man karta hai?
0: Nahi, aisa nahi bolunga. It's just that like I said, wo modulate bahut acche se karta hai. Wo
1: वो एक एक वर्ड को समझता है.
0: ये बोलो क्या? हाँ,
1: ये. और अब मतलब ऐसा होता है कि कुछ सिंगर्स जो होते हैं वो गाना गा रहे हैं, और कुछ सिंगर्स जो होते हैं वो गाने का जो मीनिंग है उसके इमोशंस के साथ, मतलब इमोशंस के साथ गा रहे हैं, तो द मीनिंग कम्स आउट वेरी वेल.
0: देयर इज दिस वन थिंग व्हिच आई डोंट रियली लाइक अबाउट mainstream movies या movie के गाने.
1: अरे हाँ, आजकल तो
0: नहीं. there is this one particular thing, और ये ऐसा नहीं कि अभी से ही हो रहा है, ये बहुत पहले से हो रहा है. I don't know why that is. कि कोई एक अच्छा सिंगर है, उससे गाने गवाएंगे, फिर उसी के गाने चलते रहते हैं, ठीक है. वो गाने बहुत अलग अलग के गाएगा, अलग टाइप के गाएगा, बट for a period of say 5, 7, 10, 12 years बस उसी के गाने चलते रहते हैं. गाने बहुत अच्छे होते हैं, इसीलिए तो वो ट्रेंड में रहता.
1: Exactly.
0: And then suddenly वो फिर बंद हो जाता. And
1: क्या?
0: Then some singer.
1: Singer.
0: And then suddenly
1: he takes a break ना.
0: नहीं. And then suddenly a new singer is in trend now. थोड़े टाइम पहले तक मोहित चौहान वॉज एवरीवेयर, ठीक है. उसके बाद में अरिजीत सिंह वॉज एवरीवेयर, ठीक है. अभी अरिजीत सिंह इज नॉट दैट मच, उतना ट्रेंड में नहीं है, ठीक है, जितना पहले था ठीक है. अभी विशाल मिश्रा का ट्रेंड शुरू हो रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है. अभी तक आया नहीं है वहां पे,
1: पर जैसे तूने बताया ना कि वो जैसे गायब हो जाते हैं थोड़े टाइम बाद.
0: एंड इट्स इट हैज नथिंग टू डू विद द सिंगर्स,
1: इट इज टू डू विद देयर
0: इंडस्ट्री राइट. माय क्वॉम इज और ये मैं पहले बोल चुका हूँ, माय क्वॉम इज मेरे को ऐसा लगता है कि अ गुड सिंगर डेवलप्स with his age, his singing matures with his age.
1: I would say the same for an actor.
0: Because
1: artist ho na aap.
0: Right.
1: तो आपको सीखना पड़ता है, आपको ब्रेक लेना पड़ता है.
0: हाँ, अभी जैसे KK, ठीक है, वो जब ही आया था तभी वो जिस तरह से गाना गाता था, ठीक है. एंड देन टूवर्ड्स द पीक

0: मतलब एब्सोल्यूट पीक द इमरान हाशमी फेस. उस तरह से वो वाले गाने उसने जिस तरह से गाए हैं, दे आर वेरी डिफरेंट. बट देन यू कैन सी कि हाउ ही हैज मैच्योर्ड. पहले भी ऑफ कोर्स पहले भी बहुत अच्छे गाना गाता था, बट देन द सिंगर डेवलप्स अ फ्लेवर, राइट?
1: और एक यू नो जो उसके श्रोता होते हैं, तो उसको सुनने वाले होते हैं, वो पहचान जाते हैं,
0: राइट?
1: और उनको समझ में आता है कि अभी क्या इमोशंस है. इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि एक सॉन्ग में ऑफ कोर्स सब कुछ जरूरी है, म्यूजिक भी बहुत अच्छा जरूरी है, लिरिक्स जरूरी है, बट जो मुझे ऐसा लगता है कि जो सिंगर होता है ना, जो भी चाहे वो कोई भी लैंग्वेज में गा रहा हो, बट यू कैन समहाउ अंडरस्टैंड द इमोशंस.
0: यस, इसीलिए काफी बार काफी सारे गाने दो अलग सिंगर से गवाए थे.
1: अच्छा, जस्ट टू एक्सपेरिमेंट.
0: हाँ, ये नहीं पता एक जस्ट टू एक्सपेरिमेंट और व्हाटएवर, बट होता है ऐसे, बहुत बार होता है. और दोनों गाने बहुत फेमस होते हैं. ऑन टॉप ऑफ माई हेड मेरे को अभी याद आएगा तो मैं याद दिलाता हूँ, एक सलमान खान की पिक्चर थी लकी.
1: हाँ हाँ, याद है मुझे.
0: ठीक है, उसमें थी स्नेहा उलाल,
1: लकी लिप्स, एक गाना भी था उसमें.
0: तो उसमें एक गाना है, सुन जरा
1: सुन जरा.
0: ठीक है, वो दो दो दो सिंगर्स ने गाया, एक सोनू निगम ने. ठीक है, तो पहले सोनू निगम का फेमस गाना.
1: अच्छा,
0: ठीक है, लेकिन ये ज्यादा पॉपुलराइज किया ही नहीं गया था, या फिर हुआ नहीं था, या फिर मेरे को मालूम नहीं है कि सेम गाना अदनान सामी ने
1: भी गाया है.
0: आई पर्सनली प्रेफर अदनान सामी का गाना.
1: ओके,
0: आई डोंट नेसेसरीली लिसन टू अदनान सामी सॉन्ग्स, वेरी टैलेंटेड सिंगर अगेन, बट दैट पर्टिकुलर सॉन्ग I prefer listening to the Adnan Sami version.
1: ऐसे बहुत सारे, नहीं ऐसा पहले भी होता था, ये तो बहुत सारे बहुत पुराना ट्रेंड है.
0: हाँ,
1: कि अलग अलग सिंगर से गवाओ और देखो कि, क्योंकि हर किसी का पिच अलग है, हर किसी की आवाज अलग है और लोगों को पहचान में आती है.
0: हाँ, तो the point that I was making is कि ये जो अब फ्लेवर निकालते हो ना, ये 10 साल हम खाली मोहित चौहान को सुनेंगे.
1: हाँ.
0: और उसके बाद में अपन खाली अरिजीत सिंह को सुनेंगे. और उसके बाद में अपन खाली विशाल को सुनेंगे. और उसके बाद में अपन खाली सोनू को सुनेंगे. Rather than doing this, why not have them sing at the same time? अरिजीत सिंह को नहीं गवाने का मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि
1: he should remain in the scene.
0: हाँ, he should remain, he should stay in the scene. Right. That is what my point is.
1: But no, they do stay in the scene. वो थोड़ा ब्रेक लेते हैं.
0: नहीं, किधर? Where is Mohit Chauhan? Tell me the last.
1: अभी हाँ, actually Mohit Chauhan हाँ सही बोल.
0: Tell me where is Sonu Nigam?
1: Sonu Nigam. Oh, he has disappeared. That's correct.
0: वही तो मैं कह रहा हूँ. तो it is not the singers.
1: But he was a very, उसका voice बहुत ही unique था.
0: अभी भी अच्छा
1: है.
0: हाँ, अभी भी काफी अच्छा है.
1: हाँ.
0: अभी भी he is very talented.
1: तो
0: ऐसा नहीं बोल सकते अपन.
1: तो आप हमें कौन सा सॉन्ग सुना रहे
0: हैं? अभी मैं कौन सा सॉन्ग सुना रहा हूँ? ओके, कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 3 आई है.
1: 3 आ गई है?
0: हाँ, 3 आ गई.
1: चलो, गुड.
0: अभी नहीं है,
1: टाइम पास
0: हो गया उसको. टाइम हो गया अभी उसको.
1: अच्छा, टाइम भी हो गया.
0: हाँ, टाइम भी हो गया उसको.
1: गुड, टाइम
0: पास. उसका गाना है, और उसका गाना है जानम समझो ना.
1: समझो ना. ओके,
0: तो अपन वो सुनेंगे और उसके बाद में अपने को रैप मारना पड़ेगा.
1: अरे क्या बात कर रहे हैं, टाइम हो गया.
0: हाँ, टाइम हो गया है. तो अगर गाना फिट होएगा तो मैं फिट करेगा, अगर फिट नहीं होएगा तो मोस्ट लाइकली वो गाना अगली बार बजेगा. तो मानो अटू, धन्यवाद फॉर लिसनिंग टू अस. और थोड़ा बाहर निकलो, थोड़े रंग देखो,
1: ऑटम के रंग देखो, पतझड़ के
0: ऑटम के रंग देखो, सेल्फी वेल्फी निकालो. ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच शिल्पी जी आज मिलने के लिए.
1: थैंक यू मल्हार जी, और थैंक यू मानवटू. फिर मिलते हैं हम अगले हफ्ते.
0: फिर मिलते हैं अगले हफ्ते.

जात मना, वर्ल्ड बाय वर्ल्ड ट्रांसलेशन, मैत्रेय वाचा, श्री मैत्रेय सेठ, साधु ऑल गुड, प्रस्टम आई एम आस्ट तो या बाय यू, साधु ओ गुड वन, लोकान ऑल द पीपल, साधु अनु ग्रहणता, शोइंग मर्सी इन गुडनेस, कीर्तिम ग्लोरीज, वितन वता ब्रॉडकास्टिंग, लोके इन द वर्ल्ड, आत्मना ऑफ द सेल्फ, अधोक्षजा द ट्रांसेंडेंस, आत्मना माइंड ट्रांसलेशन, श्री मैत्रेया सेड, ओ विदुरा, ऑल ग्लोरी अंटू यू, यू हैव इंक्वायर्ड फ्रॉम मी ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल गुडनेस एंड दस यू हैव शोन योर मर्सी बोथ टू द वर्ल्ड एंड टू मी because your mind is always absorbed in thoughts of the transcendence, perplexed by his divine grace, Abhay Charan Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada, Maitreya Muni, who has experienced in the science of transcendence, could understand that Vidura's mind was fully absorbed in transcendence. Adokshaja means that which transcends the limits of sense perception or sensuous experience. The Lord is transcendental to our sense experience, but he reveals himself to the sincere devotee. Because Vidura was always absorbed in thoughts of the Lord, Maitreya could estimate Vidura's transcendental value. He appreciated the valuable inquiries of Vidura and thus thanked him with great honor. Next is text 19. Naita chitram toyi akshatar bad rayana viryaji grahi तो अनन्य भावी न यत्वया हरि ऋश्वरा, वर्ल्ड बाय वर्ल्ड ट्रांसलेशन, ना नेवर ए तत् सच इंक्वायरीज चित्रम वेरी वंडरफुल तो ही इन यू अक्षता ओ विदुरा, बादरायन ऑफ व्यासदेवा, वीर्यजी बोर्न फ्रॉम दी सीमेन, ग्रहिता एक्सेप्टेड अनन्य भाविना विदाउट डिविएशन फ्रॉम दी थॉट, यत बिकॉज त्वया बाय यू हरि द personality of Godhead, Ishwara, the Lord. Translation. O Vidura, it is not at all wonderful that you have so accepted the Lord without deviation of thought. For you were born from the semen of Vyasadeva, perplexed by his divine grace, Abhay Charan Bhakti Vedanta

भगवतो नित्यम सम्यता शानुगस्या हा यस्या ज्ञानो पदेशाया मादि सद भगवान वृजन. वर्ल्ड बाय वर्ल्ड ट्रांसलेशन. भगवान योर गुड सेल्फ भगवता ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड नित्यम इटर्नल सम्यता रिकॉग्नाइज्ड सा अनुगस्य वन ऑफ द एसोसिएट्स हा हैव बीन यस्य ऑफ हुम ज्ञान नॉलेज उपदेशाया फॉर इंस्ट्रक्टिंग पापा अंटू मी आदि सत सो ऑर्डर्ड भगवान द पर्सनलिटी ऑफ गॉड हेड वृजन वाइल रिटर्निंग टू हिज अबोट. ट्रांसलेशन योर गुड सेल्फ इज वन ऑफ द इटर्नल एसोसिएट्स ऑफ द सुप्रीम पर्सनलिटी ऑफ गॉड हेड फॉर दो फॉर हूज सेक द लॉर्ड वाइल गोइंग बैक टू हिज अबोर्ड लेफ्ट इंस्ट्रक्शंस विद मी परपेट बाई हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरण भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद. यमराज द ग्रेट कंट्रोलर ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ डिसाइड्स द लिविंग एंटिटीज डेस्टाइन्स इन देयर नेक्स्ट लाइव्स. ही इज श्योरली अमंग द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द लॉर्ड. सच कॉन्फिडेंशियल पोस्ट आर ऑफर्ड to great devotees of the Lord who are as good as his eternal associates in the spiritual sky. And because Vidura happened to be among them, the Lord, while returning to Vaikuntha, left instructions for Vidura with Maitreya. Muni, generally the eternal associates of the Lord in the spiritual sky do not come to the material world. Because sometimes they come, however, by the order of the Lord, not to hold any administrative post, but to associate with the Lord in person or to propagate the message of Lord in human society. Such empowered representatives are called Shaktiya Visho Avataras or incarnations invested with transcendental power of attorney. Next is text 22. Athate Bhagavad Lila Yoga Mayoru Brahmahita Vishwa Istiti Ud भवान तथा वर्णयामी अनु पार्वशा. वर्ल्ड बाय वर्ल्ड ट्रांसलेशन अथा देयरफॉर ते अनटू यू भगवत पर्टेनिंग टू द पर्सनलिटी ऑफ गॉड हेड लीला